0: तू मेरी पुकार सुन ले, माता के दरबार स्वीकार सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मभारी, धन गुरु अमरदास।
1: धन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

0: नहीं, तू ताने पुत्र ते ताने तेरी भक्ति। नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नास।
1: नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नास।
2: बेटी,
3: पिताजी,
2: मैं क्षमा कर दे बेटी।
3: पिताजी, माँ,
2: पुत्र, बेटी, मैं बड़ा शर्मिंदा।
3: यात्रा न को पिताजी।
2: हाँ बेटी, मैं गलसा तू सच ही ऐसी जिस परमात्मा से तेरा विश्वास, वो सचमुच सर्वशक्तिमान, वो लीला परंपरा है।
0: राजा दूनी चंद?
2: नहीं संत जी, सिर्फ दूनी चंद को मैं अपने अहंकार के कारण राजपाठ के लायक नहीं रहा। जेड़ी मेरी बेटी ने मैंने दसी है।
3: पिताजी।
2: बेटी, मैं इसलिए कह रहा सा कि तुसी घर जाओ।
3: नहीं पिताजी, जिथो मेरे पति नु नवा जीवन मिलिया सारे लिए वही थान सुलखनी है।
0: रजनी ठीक कहंदी है राजा दूनी चंद, ऐसी सारी तीर्थ यात्रा ते तपस्या का फल समुचे तौर ते ऐसे स्थान ते मिलिया है। ऐ धरती बड़ी पावन है, एनु ऋषिया मुनिया का वरदान है। ऐ बेरी दुख पंजवी बेरी है, ते ऐ छपड़ी अमृत का कुंड है।
4: अमृत के इसे कुंड से गुलाम दास जी ने पहला टक लगा के इस अमृत सरोवर का रूप दिता, जिथे अज लखा इंसान स्नान करके मन निर्मल के तन पंचन करते हैं। की हिंदू की मुसलमान की सिख की ईसाई, अमृत सरोवर के चौवां कूटा वाल खुले दर हर एक लिए सदा ही खुले रहते हैं।

प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमले अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहंदे ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसे तरह हे परमेश्वर, मैं तेरे तो बगैर नहीं जी सकता। धन गुरु नानक साहब का यह पावन शब्द आओ आप सारे प्यार नाल पढ़िए सुनिए, और जैसा प्यार

सह दे नाल अपने प्रभु दे नाल रथे गए बाब जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया ओ सारियां नूं चंगे लगदे ने क्यों जो हर का प्यारा सो सबना का

श्री गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते ने, परमेश्वर मैं तेरा बाणिया हां, तू मेरा साहिब है। साध संगत आज दे इंसान कोल चार पैसे आ जाए, कोई थोड़ी बहुत ताकत होवे, वो समझदा है कि मेरे वर्गा हुण कोई नहीं। ये जड़ी मैं है, एहो इंसान नूं चैन नाल नहीं बैठन देंदी। अज हर इंसान दुखी है, चाहे वह गरीब है, अमीर है, कोई राजनीतिक है, और यह भी देखे है कई धर्मी भी दुखी ने, क्योंकि नाम रखवाण दे नाल कोई धर्मी नहीं हो जाता। जदों तक मन विचों हौमे नहीं जाती, उदों तक इंसान सुखी नहीं हो सकता। हौमे की है? मैं जो कहना ठीक है, जो मैं कह रहा वो ठीक है, जो मैं कर रहा वो ठीक है, बस ये मैं इंसान नूं जीवन नहीं दिंदी। घरां विच भी सुख नहीं, घरां विच भी मैं है, भरा भरा दा प्यार नहीं, प्यो पुत्र दा प्यार नहीं, पत्नी पत्नी दा, पत्नी और पति दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे होमे और माया आ जावे उत्थों प्यार उठ जांदा है। और होमे तां आंदी है जदों इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके, गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहिंदे ने परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दिती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नूं दुकान ते बिठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहिंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दिता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोकां नूं जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा टंडोरा दुनिया नूं दे रहा ताकि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

जरूर आवेगा। मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए, बेबे नानकी और नाल उन्हां दे पति जयराम जी वो भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखल होए और भज के अपने पिता मेहता कालू से गल लगे। अखां विच अथरू पै वगदे ने ते कहन लगे, पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए असां तां इह सोचिया कि जे तू आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नूं भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए जा अपनी मां नूं मिल, उन्हूं भी दिलासा दे जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी

हवारी बन जा, खनिए बन जा, तो साहिब के नामे ऐ परमेश्वर मैं तेरे दुबारी तेरे नाम तो कुर्बान जाना। तन गुरु नानक साहब जी बयान करते हैं, आओ अपनिया बिरतियां उस पास ले चलिए। गुरु नानक साहब जी पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते हैं। बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे बैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नू मिले, नाल बेबे नानकी दे पति

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब ने कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नू मिलो। बड़ी वैराग विच है धन गुरु नानक साहब, माता नू मिल के बेबे नानकी जी नू मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तो थले उतरे, भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लिया। कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ते नहीं हो सकता। सात संगत, ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साडे मना विच साडे हिरदे विच प्यार होवे। जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा। जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके, चंगा पिता ना बन सके, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके, सात संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान नू दुनिया विच भेजे है और इंसान विच

दुनिया विच जा रहे हैं, बंदगी कर, सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना, सचखंड बना। एक कथा कहानियां सुननियां हैं, अपने महापुरुषां दे जीवन वाल देखना है। ओ पति भी ने, पुत्र भी ने, ओ भरा भी ने, ओ सज्जन मित्र भी ने, ओ गुरु भी ने, ओ पीर भी ने, उन्हां ने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मना विच प्यार रखिए। साडे मन विच प्यार होवेगा, अपने घरदियां नू प्यार देंगे, लोकां नू प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

0: तेरा नाम खुंदकारा।
1: खुंदकारा क्यों लगे?
0: खुंदकारा लकड़ी के उस टुकड़े नूं कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जांदा।
1: पटरा की होंदा?
0: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोंदे ने। भगत नानदेव जी दास दे छीने सन, कपड़े धोंदे धोंदे अपनी आत्मा नूं हरी नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैनू तेरे नाम की उंगली टेके जिन्नी के पटरे नूं खुंदकारे दी।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा जो पिंड सतसा सब कुछ है तेरा माणा में माणे तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

तो तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सेना तू मेरा पिता तू है मेरा माता।

जियो तुमरी कृपा ते तुद पछाणा तुमरी ओट तू है मेरा माणा तू बिंदु जा और न कोई था तेरा खेल अखाड़ा जियो तू बिंदु जा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना सब प्रभु जी पास सब कुछ कीता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई जे देवड़ियाई ता तेरी वड्याई एक पुत्र तुझे पिहाऊं मन के प्रसरा सुखदाते नानक के

अपनी कृपा करे। चल कमल नल खड़ा दे किस दिन आम की, पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

दिन होत साधु तुरे आवण जानू रे थित पाई जल मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दाई गुरु गुर सच्चा दिन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानक सब बनिहार हर गुण गाओ।

ज्ञानेश्वर जी महाराज। स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज दे पंथ दे विच दाखल हो गए ते चल पे उना दे न

थोड़ी दूर बाहर स्वामी ज्ञानेश्वर जी ने विश्राम कीता। देखिया नेड़े एक खूह दिखाई दे रहा है, मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देंदा। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया, देखिया भाई ए मेरे नाल जो चले

कामदेव ते भगती दी अवस्था विच सन। ओ ते नारायण दे चरना कमलां विच जुड़े हुए सन। त्योहार विच विचों नारायण दे

0: जित्ता जित के कायम सिख राज कीता, चंडा केसरी लाहौर चुला दिता। जी दी बात ने बै अफगान पौदे, नौ जग दे विच चमका।
1: गुजरा वाले दी धरती 1791 दा पागा परिया दिन
2: सरदार गुरदयाल सिंह दे घर माता तरन कौर दी कुखों जन्मिया सरदार हरी सिंह नलुआ।
1: 7 साल दी उमर विच

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारा विच नलवे दियां गल्ला होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: 28 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाणा नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजियां दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपा दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पार पै गया।
1: हुण महासिंह अगे तीन काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पार पूरना, ते पिशोर बीमार पए सरदार हरि सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका, पिशोर च सरदार हरि सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरि सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वद दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आखिया,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछो घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभु अपना धरता। दीस आवत में बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

संवाद पेश करते ने पवित्र बाणी द्वारा असा कलयुगी जीवां नूं समझा रहे ने। घर दे विच इस्त्री अते मर्द दोवें बड़े प्यार नाल रह रहे ने। ए जड़ा मर्द है इसनूं जदों सतसंगत प्राप्त होई उथों इसनूं पता लगा कि जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासा है। जेड़ी तत वस्तु नूं प्राप्त करन वास्ते यानी जीवन ते मरण दे इस गेड़ नूं खत्म करन वास्ते जो साधन है वह सतगुरु ने दसिया कि नाम जप सिमरन कर, जीवन विच चंगे कर्म कर, शुभ कर्म कर, ता तेरा ए जीवन सफल होवेगा।

कोई रोक नहीं सकता। जिन्हां ते माण करदा है भरा भाई रिश्तेदार दोस्त मित्र एथों तक के सब तो नजदीकी रिश्ता है इस्त्री दा ओ भी साथ छड़ जांदी है। सारे कट्ठे होके फिर दिबाण दे उत्ते रख के बन के इसनू चार बंदे अपने मोढ़ियां ते चुक के तुर पैंदे ने। जेड़े इसनू मेरा मेरा करदे सन ओही हुण इसनू अगन भेट करन वास्ते ओही इसदा अंतम संस्कार करन वास्ते तुर पैंदे ने। ऐसी है ए दुनिया ऐसा है ए संसार। हजूर गुरबाणी भी सानू उपदेश फरमान कर

जे हुक्म आ गया उस पार ब्रह्म परमेश्वर दा, उसनु कोई मेट नहीं सकदा। तो शेख फरीद जी, असा माया मोह दे जंजाल विच फसे हुए मनुखा नु एक जीवन दी सच्ची गल दसदे ने कि ए जीवन नाशवंत है। जे कुछ सच्चा है तां वाहिगुरु दा परम पवित्र नाम है, और सच्चे अमल चंगे अमल कीते हुए ही दरगाह दे विच कम आउणगे। कहंदे ने फरीद जी,

बाबा फरीद जी ने मनुख नू समय दी कदर करन वास्ते प्रेरणा कीती। सतगुरु कहंदे ने सारियां जूनां दा सरताज बना के मैं तैनू संसार विच भेजिया। आम बात है कि जेड़ा वड्डा होवे ओदी जिम्मेवारी भी वड्डी हुंदी, वड्डे दी जिम्मेवारी भी वड्डी। साहब कहंदे ने इस धरती में तेरी सिकदारी, वड्डे वड्डे शींब गेले नथा पाई फिरदा इंसान, बड़े बड़े जरीले नाग पटारियां विच बंद करी फिरदा। सतगुरु कहंदे ने पर तेरा कोई फर्ज भी है, तैनू नाम जपण वास्ते भेजिया संसार विच। गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, ए समा है तेरे नाम जपण दा। तां बाबा फरीद ने चेतावनी दित्ती है, भाई जदों दरिया विच थोड़ा थोड़ा पानी होवे ओदू तां बेड़ा तैयार कर लै ताकि समय नाल तू पार लंघ सके, ते जदों दरिया विच तू ग्यानी आ गई, तूफान आ गया, दरिया ठाठा मारदा होवेगा, उस वेले मित्रा पार नहीं लग्या जाना, फिर तां डुबण दी गल ही है। इस करके कृपा कर, नाम जप, नाम दा बेड़ा तैयार कर ताकि समय नाल तू भव सागर तर सके। गुरु महाराज सच्चे पातशाह दी पवित्र बाणी विच बाबा फरीद जी प्रेरणा दे रहे ने ते सानू चेतावनी कर रहे ने, भाई समय दी कदर।

तब कत मूंड लुकई है। हुण तेरा सोहना मुख है, सोहनी रसना कुदरत ने दिती है नाम जपण वास्ते, ते जे कदे तू पशु दी जून पै गया ते फेर पाई।

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी आरंभता और बख्शिश सतगुरु जी दी। इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लंघ के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी। जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, एदे विच कला है। वाजे पंज शब्द तद घर सभा गए, घर सभा गए शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया दे विद्वान और कलाकार सूझ वाले बैठे हो, गुरु दी कला देखिए राग सारंग विच और आप जी चंगी तरह समझ के इस नूं सुनोगे, आप जी दे तन मन विच ठंडक पैदा हो जाएगी और गुरु दी बख्शिश और समझ दा इह निचोड़ होवेगा। शब्द सारे माई भाई बड़े प्यार नाल टिक के सुनांगे तां इहदा ज्यादा लाभ होवेगा।